आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

0: Like a radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116 471 0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

असंग अमर कर जाहे जोर, असंग गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई

जोर ना जुगती छुटाए संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार।

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चलो। Feel good track.
2: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Breakfast with Deep Raja. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: West Brom to Sparkhill. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Next, the Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Radio Midlands.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू 1 पीएम
0: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो. बस इस वीकेंड पे ही रितु जी ने ब्रेक लिया है तो उन्हें कवर करने मैं आ गई हूँ. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे प्यारे प्यारे धुरंधर हमारे अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं. पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे ही. मिस किया मुझे, मैंने भी आप सबको बहुत बहुत मिस किया. एंड ऑब्वियसली व्हेन आई कम हियर ऑन दिस हॉट सीट, यहाँ पे इस स्टूडियो में आप सबसे मिलने जुलने का और बातचीत करने का जो मौका मिलता है वो आई मीन इट मेक्स मी हैप्पी, है ना. एंड स्पेशली आप देखो ना, मौसम जिस तरीके से बदल चुका है हमारे यहाँ पे, ये गुलाबी ठंड जो आ गई है सुबह सुबह की, हमारे सबके जैकेट्स आ चुके हैं कबर्ड के बाहर और हम सब जो हैं इस ठंडक के साथ अपने रूटीन्स में आ चुके हैं. इस बार इतनी ज़बरदस्त गर्मी रही कि आप और हम झुलस गए गर्मी में, टैन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब सितंबर में धीरे धीरे हम जा रहे हैं ठंडक की तरफ. तो हमेशा की तरह अश्विनी असाइनमेंट देगी. बिल्कुल देगी, ऐसे कैसे होगा कि बिना असाइनमेंट के शो चलता रहेगा. सो आज का मेरा सवाल समझ लीजिए या समझ लीजिए कि बस दिल की बात है. तो दिल की बात यानी सुबह सवेरे चाय कॉफ़ी ग्रीन टी हम सब लेते हैं. चाय आपके लिए क्या क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है चाय आपके लिए? फॉर मी चाय इज एन इमोशन, चाय इज एन शाबाशी, चाय इज एनर्जी एंड चाय इज बीइंग विथ माई सेल्फ. आपके लिए चाय क्या है? ठीक है, तो ये मेरा सवाल इस घंटे का. सेकेंड आवर हमेशा की तरह यादें होने वाला है, थर्ड आवर थ्री वर्ड गेम होने वाला है. तो ज़रूर वो सब जो रितु जी के शो में होता है वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली हैं. तो फटाफट चाय के बारे में कुछ लिख के भेजना चाहते हैं ज़रूर लिख के भेजिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 80 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
5: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो 10:24, इट्स 24 minutes past 10. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. सैटरडे 19th of September एंड गणपति बाप्पा मोरिया. तो जिनके यहाँ पे भी गणपति बाप्पा आए हैं, आई एम श्योर आप सब बाप्पा के साथ में ये सारे डेढ़ दिन हो, पांच दिन हो, तीन दिन हो या दस दिन हो, आप सब इंजॉय कर रहे होंगे. मेरे यहाँ पे भी गणपति बाप्पा है वो पूरे के पूरे 10 दिन. और जब गणपति बाप्पा आते हैं तो घर का माहौल एक तो इतना प्रफुल्लित हो जाता है, अगेन आई लव माय हिंदी, कि बचपन की सारी यादें. एंड आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का वहाँ पे एंथुसियाज्म होता है व्हेन इट कम्स टू गणपति बाप्पा, इट्स एक्सट्रीम, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. सो वो जो मराठी गीत और वो अथर्वशीर्ष हम पे करते हैं, जो मंत्र चलते हैं घर में, इट्स एब्सोल्युटली एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि सारे मतलब पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे. अगर आपके यहाँ गणपति बाप्पा हैं तो मेरी तरफ से गणपति बाप्पा को नमस्कार. आपके गणपति बाप्पा को बोलिए कि दुनिया में बिल्कुल सुख शांति और समाधान दे और सबको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस दे. अब इस दुआ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि चाय के ऊपर हमने टॉपिक शुरू किया, सवाल शुरू किया है. तो सभी लोग चाय के बारे में उनकी इमोशन क्या है वो बता रहे हैं. वन थिंग विच आई मिस विद चाय इज चाय के ऊपर की मलाई, मलाई मार के जो चाय होती है, आहा उफ, आई सीरियसली मिस दैट. सो चाय लवर्स विथ मलाई, सो मलाई वाली चाय लवर्स, प्लीज रेज योर हैंड्स और मुझे बताइए कि क्या आप मेरी कैटेगरी में आते हैं. एंड साथ में जरा बात हो जाए अबाउट दिवाली स्टोरी. तो फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क. ये होने वाला है ओवो वेम्बली अरीना ऑन सैटरडे 27th of September. Doors will open at 4:30 PM with student pre-show from 5 PM to 5:45 PM and the main performance will be from 6:15 PM to 9:30 PM. Tickets are available at www.diwalistory.com.
0: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले की आवाज में एक फूल दो माली से सुनाया आप सभी को ये गीत। वीकेंड है यानी फुल ऑन चिलैक्स रिलैक्स एंड अपने अपने काम से काम, ये वाली चीज होती है। तो वीकेंड्स पे गैदरिंग्स होती हैं, उसके बाद में घर के काम होते हैं, बिंज वॉचिंग होती है एंड जो टू डू लिस्ट थी आइदर उस टू डू लिस्ट को हम करते हैं या फिर नहीं करना, आज कुछ नहीं करना बिकॉज वीकेंड है। दैट इज वॉट एक्चुअली हैपन्स विद मोस्ट ऑफ अस, है ना। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी हियर। सो बता दूं कि आज और कल सुबह ओनली दिस वीकेंड आई एम कवरिंग रितु जी, शी विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीकेंड। सो समय जो है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ में बढ़ रहे हैं हम। तो सितंबर की 19 तारीख हो चली है 2026, जो स्पीड में भागा है ना इस साल, तो समझ भी नहीं आ रहा है कि समय कहाँ जा रहा है। और इस समय के साथ में जा रहे हैं आगे आप और हम। बहुत सारे फैंटास्टिक गीत यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सबके लिए लाइंड अप है। नेक्स्ट आवर में यादें एंड उसके बाद में थ्री वर्ड्स वाला सॉन्ग वो भी होने वाला है। माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 020-8574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: हमारी रक्षक है वो।
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
7: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: 1 pound ke badle aapko milenge 128.57 Indian rupee, 85.27 Afghani, 371.37 Pakistani rupee, 164.51 Bangladeshi taka, 443.48 Sri Lankan rupee, 173.46 Kenyan shilling, 1.33 US dollars and 63.72 Mauritian rupee.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 48 मिनट्स पास्ट 10 आप सभी ने ट्यून इन किया है मॉर्निंग शो विद रितु माय नेम इज अश्विनी आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम 10 AM टू 1 PM सो हमारे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि आप हमें हेलो जी गुड मॉर्निंग जी लिसनिंग टू यू जी जरूर कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें मैसेज करके बताते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं तो जब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की हो सकता है कि इसमें से कुछ फैक्ट्स आपको पता है हो सकता है कि नए फैक्ट्स हों सो क्या आप जानते हैं कि जिन्हें सपने नहीं आते हमारी जान पहचान में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हमें मिलता है जो कहता है कि हाँ सपने अपने मुझे सपने नहीं आते सो जिन्हें सपने नहीं आते दे हैव अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिस इज नॉट मी सेइंग दिस दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ओके अगर आप कहीं घूम रहे हैं आपके घर में रिलेटिव्स में फ्रेंड्स के यहाँ कहीं पे छोटी बेबीज अगर आपको बहुत देर तक स्टेयर कर रहे हैं आपकी तरफ देख रहे हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं आपकी तरफ देख के खेलने लगते हैं आपके साथ तो आप बड़े अट्रैक्टिव हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन की जो परिभाषा होती है ना वो उनके लेवल पे कैसे वो करते हैं मुझे पता नहीं लेकिन आई एम श्योर आप सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड जो लोग खुद से बतियाते हैं कौन कौन है भाई मेरी कैटेगरी में आई टॉक अ लॉट टू माई सेल्फ जो लोग खुद से बतियाते हैं दे आर बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग I think yeah, over the time it happens, है ना? And सबसे important कि जो लोग दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरे level पे pain देखा हुआ होता है, उन्हें पता होता है कि वो कितना hurt करता है, so इसीलिए वो लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं। इस hour के आखिरी गीत की तरफ बढ़ रहे हैं आप और हम डॉन फिल्म से जरा मस्ती हो जाए किशोर कुमार की आवाज में पान वान खा लेते हैं मस्ती कर लेते हैं और अगले आवर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं यादें होंगी नेक्स्ट आवर में उसके बाद में थ्री वर्ड गेम दिस इज अश्विनी सिटिंग इन फॉर रितु
0: फ्रॉम वेस्ट मिडलैंड्स टू ईस्ट मिडलैंड्स दिस इज लाइका रेडियो मिडलैंड्स
2: ये है
0: लाइका रेडियो
2: क्योंकि सांस भी
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover Live UK Tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585. 801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिष आइडल्स अब अवेलेबल है सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
7: इट्स बैक, इट्स बिगर एंड बेटर।
8: ZTV एंड Leica रेडियो प्रेजेंट्स द लेस्टर दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
9: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
8: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
9: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: For store bookings, call 07803-240580.
9: Or visit DiwaliShoppingFestival.co. UK.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
14: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
13: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
14: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
13: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio Partner Leica Radio.
15: દુબઈ માં પ્રોપર્ટી ખરીદવાની તમારી સફર હવે લેસ્ટર થી શરૂ થાય છે.
16: હેલો એવરીવન, ધીસ ઇઝ રિઝવાન સાજન, ફાઉન્ડર એન્ડ ચેરમેન ઓફ ડેન્યુ પ્રોપર્ટી, અને અમે લાવી રહ્યા છે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો મારિયટ હોટેલ લેસ્ટર માં 26-27 સપ્ટેમ્બર માં.
15: પોર્ટ રિયલ એસ્ટેટ તમને આમંત્રિત કરે છે ડેન્યુ પ્રોપર્ટી સાથે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો માં. મેરિયટ હોટેલ સ્મિથવે લેસ્ટર LE19 1SW 26 અને 27 સપ્ટેમ્બર સવારે 10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી. જાણો ગ્રીન્સ, બ્રીઝ અને શાહરૂખ વિશે. પ્રોપર્ટીઝ 1,90,000 pounds થી, બુકિંગ માત્ર 5,000 pounds થી. દુબઈ ની મફત ફ્લાય આઉટ ઓફર્સ વિશે પૂછો. દુબઈ ની તમારી સફર અહીં થી શરૂ થાય છે. શરતો લાગુ.
17: 7 સ્ટેશન્સ, 1 પોડકાસ્ટ, 1 મોબાઇલ એપ. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma. Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
18: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए. आहा.

0: वे जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रितु शर्मा टुडे एंड टुमारो, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक. सेकंड आवर आप और हम बढ़ रहे हैं आगे. तो मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स, बिल्कुल आप लोगों के जो अब दे दनादन मैसेजेस आना शुरू हो गया ना, मजा आ रहा है बिल्कुल. यस, देखिए जो एक कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन जरूरी होता है किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता हमारा ये कम्युनिकेशन पूरा करता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है. यहाँ पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिस पे आपके मैसेजेस आते रहते हैं, जिसे देख के हम भी मुस्कुराते हैं और आपको जब हम रिप्लाई करते हैं तो आप भी मुस्कुराते हैं. बहुत सारे लिसनर्स ने उनके घर में क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है इसकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजी हैं. माय सलाइवरी ग्लैंड्स आर गेटिंग एक्टिव, बट लेट मी टेल यू, मैं भी खा पी के आई हूँ. मराठी लड़की हूँ तो पोहा उपमा बहुत कॉमन होता है हमारे यहाँ पे. आई डिड हैड माय कांदा पोहा सुबह बिफोर कमिंग इन टू स्टूडियो. सो बिल्कुल आपके किचन में जो भी बन रहा है बिल्कुल मुझे तस्वीरें भेजिए. आगे का पूरा एक हफ्ता मेरे यहाँ पे क्या बनना है तो वो मेरा वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगा, है ना. हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. किचन में क्या बनना चाहिए ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाइयों और बहनों. सो अगले गीत की तरफ हम बढ़ेंगे, बट नाश्ते के बारे में तो यस, देखो यहाँ पे पिक्चर्स आना शुरू हो चुकी हैं. अब सेकेंड आवर में कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी आप सबसे, सबसे पहले डू यू बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जब भी हमारे हाथ से कुछ चीज जाती है तो बहुत कुछ बड़ा हमारे लिए ऊपर वाले ने रिप्लेसमेंट रखा होता है. इस चीज पे हमने पहले भी कई बार बात की है, लेकिन डू यू थिंक कि वो जो पेशेंस नीडेड है वो आपके पास में है, एंड डू यू एक्सपीरियंस द गिफ्ट ऊपर वाला जो आपके लिए रखता है जब वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाते हैं. आई एम करंटली एक्सपीरियंसिंग दैट. आपका अपना अनुभव क्या है जरूर बताएंगे, बताइए. और छोटी छोटी एम्बेरसिंग चीजों के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपए एंड 80 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए मिला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 11:26. इट्स 11:26. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर MM. ओके, सो यादी में आपको हम सुनाते हैं 50s के एरा के गीत. सो नया दौर फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1957 में, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनाए उड़े जब जब जुल्फें. एवरी इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस सॉन्ग इज लाइक उफ, मतलब अगला भी गाना जो सुनाऊंगी आप उफ ही करने वाले हो. सो एनीवे, इसमें जो घुंघरू और जो ढोलक यूज होता है, आई जस्ट लव दैट एंड दैट लाइन, यू नो, उस गांव के सुअर के भी सदके जहां मेरा यार बसता, मतलब क्या प्यार है, कितना क्या लेवल का प्यार हो सकता है कि इवन द सुअर गेट्स द लव देयर. आई मीन फैंटास्टिक लव इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि वो सारी चीजें आपको सुंदर दिखाता है, बनाता है और महसूस कराता है. यादें में अगला गीत आप सबके लिए पेइंग गेस्ट, विच वॉज रिलीज इन 1957, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कहेगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: दिस इज रितु शर्मा।
3: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

What a beautiful track this was. लता मंगेशकर एंड नितिन मुकेश की आवाज में ना खुदा, which was released in 1981. उस फिल्म से सुनाया ये गीत. मेरा नाम है अश्विनी. I am sitting in for Ritu today and tomorrow. जी हाँ, next week हमारी प्यारी रितु जी will be back on this hot seat अपना program present करते हुए. So कुछ गीत ऐसे रहते हैं जो बस अच्छे लग जाते हैं, है ना? उन्हीं में से ये गीत था. एंड ये वाला गीत हमारे रेडियो पे ही प्ले किया गया था. एंड कभी तो ये गीत मुझे अच्छा लग गया, तो उनमें से ये एक गीत है. मैं आप सबसे बात कर रही थी कि हम हमारी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है हमें, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई एम श्योर आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने भी इसमें से कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है. वेविंग बैक एट समवन हु वाजंट वेविंग एट यू. एक्चुअली होता है ना कि भीड़ में से आ रहा हूँ, कोई तो आपको वेव करा नहीं हो, लाइक ओ माई गॉड ये कौन है, मैं इनको जानती हूँ जानता हूँ नहीं. एंड सेइंग यू टू द वेटर व्हेन द वेटर सेज एंजॉय योर फूड एंड द वेटर गिव्स दैट लुक कि इनको भूख लगी है, है ना? ट्राइंग टू पुश अ डोर दैट सेज पुल देन प्रिटेंडिंग टू चेक योर फोन. आप कितने प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, ये एक्चुअली पुल या पुश वाला जो डोर पे लिखा रहता है ना, वो इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पढ़ते. आप भी पढ़ते हैं या नहीं मुझे जरूर बताइएगा. देन ट्रिपिंग ऑन अ फ्लैट पेवमेंट एंड डूइंग दैट लिटिल जॉग टू प्रिटेंड यू मेंट इट. गिरने के बाद कभी ऐसे होता है कि आप हंसे हैं जोर से कि इसके पहले दुनिया मुझ पर हंसे मैं खुद हंस दूँ, ऐसे हुआ है? आई हैव डन दैट प्रीवियसली, पक्का किया है. रियलाइजिंग यू हैव हैड ईयरफोन्स विथ नो म्यूजिक फॉर 20 मिनट्स एंड यू हैव बीन नॉडिंग अलोंग टू नथिंग. ऐ में ही शो करें. एक तो मुझे लगता है ये हेडफोन्स पहनना ना, basically this is an escape for most of the people. Laughing too loud at your own phone in a quiet train carriage. Yes, we all have experienced. Aise log hote hain. Calling your teacher or boss mom by mistakes. Haan maa. And then you're like, oh, main to office mein hu yaar, maine maa kahan se bol diya abhi. Haan mamma jo bhi hai. Going to say bye on a call, then both of them you say it 3 times. Haan chalo bye milte hain. Haan bye. Yes, I think with Asian people, hum bye bolne ke baad mein bhi agle 10 minute na baate karte rehte hain. And walking into the wrong house car because it looked like yours. We all have experienced this as well. House to nahi, lekin car zarur hua rahega. And getting caught to talking to yourself or worse, arguing with yourself in the kitchen. एक्चुअली होता है. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं ना, वो खुद से बतियाते रहते हैं पूरे दिन तक कुछ चीज़ों को लेके, जब उनके साथ में बाहर की दुनिया में कुछ मतलब किस्सा हो गया लेकिन वो उनको बोल नहीं पाए, पर पूरे दिन भर अपने आप से, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे धक्का दे दिया, ट्रेन में जगह नहीं दिया, हट सकता था, ऑल दो स्टफ. तो क्या ऐसी एम्बेरसिंग चीज़ें आपने भी महसूस की है? इनमें से कौन सी की है लिख के भेजना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए है. Podcast update. Episode number 34 is there to watch and listen. Title is Modern Harassment, hosted by Deep Raja. Deep Raja speaks to Sangeeta Pandey of IIW and Gayatri Shenoy, Principal Business Analyst, about modern harassment. They explore modern harassment at work, family, and when one should speak up. Like Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms. Like Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to

0: आइए जी, आइए तीसरे आवर में हम और आप बढ़ रहे हैं इस म्यूजिकल जर्नी के आखिरी पड़ाव में. वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द मॉर्निंग शो एंड माय नेम इज अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो फ्रॉम 10 AM टू 1 PM. 12:16. पहला गीत हमने सुनाया 90s के बच्चे खुश हो गए, दूसरे गीत सुनाया तो 80s के बच्चे खुश हो गए, अभी तीसरा गीत सुनाएंगे तो ये 70s वाले बच्चे खुश होने वाले. लेकिन इस आवर का जो मेन फीचर है, 3 word वाला गीत, मतलब आराम से बैठ के खाना पीना चल रहा है, कोई असाइनमेंट नहीं करनी, ऐसे तो नहीं हो सकता. सो अब ये कौन से गीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जरा लिख के भेजिएगा. निगाहों लाखों में, ठीक है, ये कौन से गीत के ये 3 शब्द हैं. निगाहों लाखों में, किसी गीत के मैंने शब्द लिखे लिए हैं, आप जरा लिख के फटाफट मुझे भेजिए और बताइए कौन सा गीत है.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 80 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.

0: Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: નવરાત્રિ ની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 p.m. at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Leica Radio.
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और Herdsman Butter Ghee 20 kg still £10.99.
2: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
6: Hamari rakshak hai wo.
7: Balaji Telefilms presents The One Force of the Forest.
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सब का मतलब क्या है? कौन कर रहा है?
7: Mystery, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
9: The buy is

0: Danew Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danew Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danew 11-11, Danew Properties,
1: Danew 11-11. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: लंदन, आर यू रेडी? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: From Alum Rock to Winston Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
4: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: What a fantastic track. Kishore Kumar ki awaaz mein sharmili film se sunaya aap sabhi ko ye geet 1971 mein ye film release hui thi. Artist of the week hai the stylish the fabulous Shashi Kapoor. Unhi pe filmaya gaya ye geet tha. 12:30 and aadhe ghante mein maine aap sabko kar dena hai tata bye bye. Aur sawal aap sabke liye three words ye kaun si geet ki baat ho rahi hai? Nigahon laakhon mein ye kaun se geet ke bare mein main puch rahi hoon. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा दे दनादन हमारे साइलेंट लिसनर्स ने ऐसा आंसर दिया सबके सब मतलब फैंटास्टिक हाँ आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे हमारे लिसनर्स इतना मशगूल रहते हैं हमारे शोज में और जितना साथ देते हैं क्या बात है लव यू ऑल ओके सो नाउ बिकॉज आई लव यू ऑल्सो एक टिप्पणी एक टिप देना चाहती हूँ आप सबको तो क्या आप जानते हैं कि आपके जो ग्रे हेयर होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेस से आते हैं और अगर आपके स्ट्रेस पे आपने काम किया और आप स्ट्रेस मुक्त हो गए आई लव माई हिंदी अगेन स्ट्रेस अगर वो स्ट्रेस जो है आपकी जिंदगी से दूर हो गया तो आपके बालों का ओरिजिनल कलर वापस आ जाता है ये मैं नहीं कह रही कोलंबिया यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड द फर्स्ट क्वांटिटेटिव एविडेंस दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड ग्रे हेयर कैन एक्चुअली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन स्ट्रेस इज एलिमिनेटेड ओके तो प्रॉपर स्टडी किया गया है इस पे एंड इसी की वजह से ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्रेस को दूर भगाइए और अपने बालों का कलर वापस पाइए पर फिर हेयर कलर इंडस्ट्री का क्या होगा अगर स्ट्रेस रिमूव हो गया तो सोचो नेक्स्ट ट्रैक अगेन अ ब्यूटीफुल ट्रैक वन ऑफ माय फेवरेट्स
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 0116 266 4278.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द मॉर्निंग शो विद ऋतु. मेरा नाम है अश्विनी एंड आई वाज कवरिंग ऋतु टुडे एंड टुमारो एज वेल. तो सुबह 10 से 1 रहेगा आपका और मेरा साथ. जी हाँ, तो 60s वाले बच्चे भी फाइनली खुश हो गए. 60s के बच्चे पूछने लगे कि अच्छा, सारे 90s, 80s, 70s के बच्चे खुश, हमारा क्या? आई एम श्योर फिर वही दिल लाया हूँ. लाखों है निगाहों में. जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब आप सारों ने दिया, तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी तालियां. प्लीज अपने आप को जरा जस्ट पैट योर सेल्फ. भाई बड़े ही फैंटास्टिकली इन्वॉल्व रहते हैं आप शोज में एंड तहे दिल से धन्यवाद. सो मिलेंगे कल सुबह, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अनुराग की जगह आज आ रहे हैं हमारा बड़ा ही हैंडसम राजवीर, हमारा जो मुंडा है वो आ रहा है आपका साथ दे रहा है. इस आवर का आखिरी गीत वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज में प्यासा सावन से. सो हमेशा की तरह बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए. प्यार दो, प्यार लो, आपके जहन और दिल में जो है बताते चलो. सी यू ऑल टुमारो, लव यू ऑल, बाय.
2: Like our radio.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Ye hai Like our radio.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: Listen to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: रंजिश सही दिल ही दुखाने
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
3: ट्रेंडिंग ट्रैक ऑफ द वीक

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने चुना था फिल्म जानवर से, 1999 की फिल्म थी. करिश्मा कपूर थी इस फिल्म की हीरोइन. गाना गाया अलका याग्निक एंड सोनू निगम ने. दूसरा गीत एक अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ एंड ये गीत गाया था हरभजन मान. एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद भी ज़रूर आया होगा. हरभजन मान के साथ आई थिंक दिया सुनिधि चौहान ने. एंड अगर आपके दिल को भाग गया तो मुझे ज़रूर बताइए. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कैसे मिजाज हैं आपके. उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए. गाने तो आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता चुन चुन कर लाई है आपके लिए. अब मैं हूँ आपके साथ तो फिकर नॉट. आप जल्दी से अपने मूड को अच्छा कर लीजिएगा और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाइए. वेल, गणेश चतुर्थी चल रही है. गणेश फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है एंड 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है और 11th डे माना जाता है कि गणेश जी का विसर्जन किया जाता है. तो इस साल विसर्जन जो है वो किस दिन होगा? कोई कह रहा है 25 को और कोई कहता है 26 को. तो जिस दिन भी विसर्जन होगा, गणेश जी हमेशा हमारे दिलों में स्थापित ही रहेंगे और वो हर आपका दुख दर्द जो है वो उसको दूर करते रहें और आप इसी तरह से गणेश जी की पूजा भी करते रहें जो मानते हैं. तो आप सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं. आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें.
1: दिस इज सरिता सबरवाल ऑन लाइका रेडियो. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India के जरिए अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है. You can go into the branch and online कर सकते हैं. और SBI Yono Mobile app अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे ₹127.90, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October. And marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601. Or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
4: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: संगीत साधना है, संगीत आत्मा की आवाज है।
9: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं,
8: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए,
10: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान।
11: सारेगामा पा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से, शनिवार और रविवार 7:30 बजे यूके, आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर।
12: इट्स बैक, इट्स बिगर एंड बेटर।
13: जी टीवी एंड लाइका रेडियो प्रेजेंट्स द लेस्टर दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल,
12: powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
13: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Gariya Centre in Leicester, with shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
12: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: For store bookings, call 07803 240580,
12: or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
14: Your Dubai property journey starts in Leicester.
15: Hello everyone, this is Rizwan Sajjan, the founder and chairman of Danube Properties, and I'm so happy to invite you all to the Dubai Property Expo happening on 26th and 27th of September at Marriott Hotel Leicester.
14: Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo with Danube Properties at Marriott Hotel, Smithway, Leicester, LE19 1SW, September 26th and 27th, 10 till 8. Discover Greens, Breeze and Shahrukhs. Properties from £190,000. Bookings from just £5,000. Ask about free flyout offers to Dubai. Your Dubai journey starts here. Terms and conditions apply.

0: क्या जबरदस्त गाना है ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता आदमी और इंसान ये था फिल्म का नाम महेंद्र कपूर साहब का सादिया बलबीर एंड जोगिंदर ने और गाना बहुत ही प्यारा था उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस गीत को एंजॉय किया जिन मेरे साथियों ने मेरे बिना पूछे ही मुझे बता दिया है कि क्या कॉमन है आज के गीतों में तो थैंक यू सो मच और ये तालियां आप ही के लिए हैं थैंक यू बड़े प्यार से आप सुनते हैं अपने होने का एहसास दिलाते हैं तो इसी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कीजिएगा कोई खास गाना आपको याद आ रहा है दिलदार या दिलदारा पे तो आप मुझे ऑलवेज व्हाट्सएप करके बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हाँ ये तो बता दीजिए कहाँ बैठे सुन रहे हैं मिडलैंड्स में हैं आप मैनचेस्टर में सुन रहे हैं या फिर लंदन और आसपास के इलाकों में जहाँ भी सुन रहे हैं लाउड एंड क्लियर ये अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो इसका मतलब कि आप प्रोग्राम इंजॉय भी कर रहे हैं तो इसी तरह से इंजॉय करते रहिएगा
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: दिवाली स्टोरी के बारे में अब बहुत दिनों से हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क पर जानकारी ले रहे हैं तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क इट टेक्स प्लेस ऑन ओवो वेम्बले अरीना ऑन संडे 27 सितंबर को डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM and the main performance from 6:15 till 9:30 PM. Zyada jankari ke liye aur tickets ke liye log in to www.diwalistory. It's a DIWALI story, STORY, one word, .com. To apni tickete abhi se book kara lijiye.
3: Ye hai Leica Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: What a beautiful song. Chalo Dildar Chalo, Chand Ke Paar Chalo. और ये गीत मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज हुआ था. फिल्म का नाम था पाकीज़ा. 1972 में आई थी ये फिल्म. और शोहरत देखने से पहले ही मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गई. जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इतनी ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था. और इनकी बहुत सी डुप्लीकेट सुनने में आया कि पद्मा खन्ना ने किए थे डांस भी. सो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक है और आपको पसंद भी आए. ऐसे ही यादगार गीत प्रोग्राम में शामिल रहेंगे. मेरा साथ देते रहिएगा इसी तरह से ऑन लाइकर रेडियो.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: अगर आज आप अपने पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बता दें कि LemFi वाले आपको बहुत अच्छे रेट्स दे रहे हैं. कुछ कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. One sterling pound can get you Indian rupees 128.12, Afghan Afghanis 86.85, Pakistani rupees 370.95, Bangladeshi taka 164.32, Sri Lankan rupee 443.88 and Kenyan shillings 173.31, US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is... Leica Radio.
0: चलिए भी जल्दी से आपको बता दें कि गोल्ड किस रेट में बिक रहा है आज. मार्केट में गोल्ड का रेट है आज 105 पाउंड्स एंड 15 पेंस पर ग्राम.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376. For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us, for everyone. The Jannan and J. Dot Anniversary Sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.
3: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon.

क्या जबरदस्त गाना तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालिजार लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत मेरे महबूब फिल्म से मैंने चुना था 1963 में ये फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था एच एस रिवेल साहब ने और आई थिंक 4th ऑफ जनवरी को ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी नौशाद साहब का था संगीत आपके मन को भाया ये जानकर खुशी हुई इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिएगा

0: What a beautiful song. और फिल्म का नाम था चिराग. इस फिल्म में काम किया था सुनील दत्त एंड आशा पारिक ने. एंड फिल्म को बनाया था राज खोसला साहब ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मदन मोहन जी ने और बहुत ही यादगार गीत हमने शामिल किया आपके लिए ऑन लाइक रेडियो नेटवर्क. जिस भी जरिए से सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय करेंगे इन सभी गीतों को. दिस सॉन्ग एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन दिस आवर आई एम गोइंग टू प्ले सम ऑफ मदन मोहन जी के हिट गाने. मदन मोहन जी के बारे में जानकारी नहीं दे रही हूँ, इट्स नॉट हिज बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी, लेकिन मैंने वैसे ही सोचा कि उनके कुछ गाने शामिल किए जाएं. तो ये था फिल्म चिराग का बहुत ही प्यारा सा गीत जो आप तक पहुंचाया किसने.
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिस इज एन एवरग्रीन सॉन्ग, बहुत पसंद किया जाता है इस गीत को, और ये गीत खास तौर पर मेरी तरफ से मेरे सभी सुनने वालों के नाम था, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म अनपढ़। बलराज सानी थी इस फिल्म में, धर्मेंद्र जी थे एंड माला सिन्हा। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मदन मोहन जी ने और राजा मेहदी अली खान साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। बहुत ही खूबसूरत गीत और एवरग्रीन है, जब भी सुनो बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आपको कैसा लगा?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
0: चलिए अभी सरिता आपको जल्दी से बता दे कि उस्ताद राहत फतेह अली खान आ रहे हैं। TCO presents उस्ताद राहत फतेह अली खान, a tribute to his uncle उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब on his 30th death anniversary. One date only, जी हाँ नोटिस कीजिएगा, one day only, एक डेट के लिए आ रहे हैं, एंड दैट इज संडे 18th अप्रैल 2027। अभी से नोट कर लीजिए अपनी डायरीज में, O2 लंदन में ये परफॉर्म करेंगे, एंड रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो। और साथ ही बता दूं कि 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क, तो ये भी नोट कर लीजिएगा।
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. Leica Extra Podcast Update.
0: Leica Extra Podcast ka episode 33 is now out. Myths and Misconception about Raising Debts, hosted by Khush. Khush speaks to Meenal Sambre, founder of Samaria Global Finance, to break down myths around business debts. So, बहुत सी जानकारी अगर आपको चाहिए कि किस तरह से business को चलाना चाहिए and all that, तो you must watch this. And Leica Extra Podcast is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p शुरू, और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
6: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
7: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
8: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
7: फ्रॉम Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: London, get ready for an unforgettable night.
2: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
8: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
13: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
12: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
14: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
9: India ke top 1%, hosted by Anil Kapoor, starts this Saturday the 19th of September at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
15: Use your brain now, play the game now.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
16: Sarita Subbaraw with your weekend classics.

0: और सदाबहार गाना। अब ये मत समझिएगा कि ये विंटेज गोल्ड प्रोग्राम चल रहा है, नहीं नहीं, आ रहे हैं मेरे बाद, आएंगे सैंडी शाह और ऐसे बहुत से यादगार गीत आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि प्रोग्राम के इस आवर में कुछ एक गाने मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशंस जो सभी को बहुत पसंद आती हैं शामिल कर दूँ। तो ये गीत मैंने फिल्म गजल से चुना था जो 1964 में रिलीज हुई थी। वेद मदन ने इसे डायरेक्ट किया था, सुनील दत्त एंड मीना कुमारी ने इस फिल्म में काम किया था, साहिर जी ने लिखे थे सारे गीत इस फिल्म के और मदन मोहन जी का यादगार ब्यूटीफुल म्यूजिक। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया जिसे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में मैंने आप तक पहुंचाया।
1: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स। करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: चलिए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बताते हैं। लेमफाई वाले दे रहे हैं आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले इंडियन रुपीज 128.12, अफगान अफगानी 86.85, पाकिस्तानी रुपीज 370.95, बांग्लादेशी टका 164.32, श्रीलंकन रुपीज 443.88 एंड केनियन शिलिंग्स 173.31 एंड US डॉलर्स 1.33।
2: लाइका रेडियो।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA.

0: Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 p.m.

0: इस हफ्ते हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे शशि कपूर उन्हीं की फिल्म जब जब फूल खिले से चुना था मैंने इस गीत को ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स सो मुझे उम्मीद है कि आपके भी फेवरेट जरूर रहे होंगे शशि कपूर साहब आइए आगे बढ़ते हैं
1: feel good track Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगी इफ इट्स अ स्पेशल डे इन योर लाइफ. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी. अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, कोई भी खुशी का मौका है, तो हम बराबर के शरीक हैं आपकी खुशियों में. गीत संगीत का सिलसिला चलता रहेगा टिल 7 o'clock विद मी सरिता सबरवाल.
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो. हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल.
0: साउथ ओल्ड ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई. आज ही उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिएगा ऑन 0208-574-8410. साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. This is Leica Radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Kanish Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
4: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208-507-7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se
7: bole chudiya.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Sangeet Sadhana.
9: Sadhana.
10: Sangeet Atma ki Aavaz.
11: हमने कोई भी reality shows में इतने सारे musicians देखा नहीं.
12: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए.
13: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
14: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 PM UK आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर.
1: योर दुबई प्रॉपर्टी जर्नी स्टार्ट्स इन लेस्टर.
15: हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान साजन, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ डैन्यू प्रॉपर्टीज, एंड आई एम सो हैप्पी टू इनवाइट यू ऑल टू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो हैपनिंग ऑन 26th एंड 27th ऑफ सितंबर एट मैरियट होटल लेस्टर.
1: पोर्ट्स रियल एस्टेट इनवाइट्स यू टू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो विद डैन्यू प्रॉपर्टीज एट मैरियट होटल स्मिथवे लेस्टर. LE19 1SW, September 26th and 27th, 10 till 8. Discover greens, breeze and shahrukhs. Properties from £190,000. Bookings from just £5,000. Ask about free flyout offers to Dubai. Your Dubai journey starts here. Terms and conditions apply.
16: Jannan. For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us, for everyone. The Jannan and J-Dot Anniversary Sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
9: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
17: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
9: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
17: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
9: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner, Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
18: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: एक और बोनस में आपको मदन मोहन जी का गीत मिल गया. जी हाँ, ये भी कॉम्पोजिशन उन्हीं की, फ्रॉम द फिल्म लैला मजनू. उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया इस गीत को भी.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम. ग्रैब योर कोको बोल टुडे. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency update.

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
0: To buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11.
4: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
4: सेलिब्रेट दिवाली विद चलो लेट्स गो Chai Chopal Diwali Gala 2026
2: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
4: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
2: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
4: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner Leica Radio.
7: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
8: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
9: Yeh hai Leica Gold

0: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN.
3: इट्स बैक, इट्स बिगर एंड बेटर.
0: ZTV एंड लाइकर रेडियो प्रेजेंट्स द लेस्टर दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
3: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
0: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
3: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
0: For store bookings, call 07803 240580
3: or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085

0: Patrick Kilari every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colours. And watch it anytime on Jio Hotstar.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: द ग्रेटेस्ट एशियन love songs across the Leica Radio Network.